तीर्थ पर्खिनेलाई पो हुँदो रहेछ नि। ए प्रकृति, ए देवी देवता, बचाई राखिदेऊ है।